प्रथम राग भैरो वै करही, पंच राग नी संग उचरही। प्रथम भैर भी बुलावली, पुन आकी गावे बंगाली। पुन अस लेखी की पई बारी, हे पैरों की पांचो नारी। पंचम हरख दिसाग सुनावी, बंगाल मद माधव गावै। ललत बुलावल गावही, अपनी अपनी भांत। अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र। द्वितीया मालक सके आलापी, संग रागनी पांचो थापै।

परबल चांड को सके उबारा खौ खाटे अहो पहुरा नंद गाय अष्टमाल को साक संग लाई।

अवरु ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया कारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतुल ठाकर भगत ते हर पाया हर भाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो

0: दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: दुख की घड़ी च श्री खोई गुरु प्यारी साध संगत जी बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आपां सारे ही अज स्वर्गवासी माता जोगिंदर कौर जिन्हां दी याद विच गुरद्वारा साहब आपां हाजरी लवाई है, उन्हां दी आत्म रूह की शांति वास्ते परिवार वालों सहज पाठ साहब आरंभ करवाए गए सन, जिन्हां दीआं संपूर्णतावां होईआं, भोग पाए गए ने, बरागमई कीर्तन होया है, अंतम अरदास होई है, गुरु जी दे हुक्म सरवण कीते ने। मैं जथे दा धन्नवाद करदा सत्कार योग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी, ज्ञानी जगतार सिंह जी, ज्ञानी जुझार सिंह, जिन्हां ने बड़ा ही बरागमई कीर्तन आप संगतां नूं सरवण कराया है, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। सत्कार योग ज्ञानी सुखदेव सिंह जी, जिन्हां ने गुरु जी दे हुक्म आप संगतां नूं सरवण कराए ने, पहलां भोग पाए ने, सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। ज्ञानी जी हुणी, ज्ञानी जगतार सिंह जी हुणी अंतम अरदास कीती है, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। गुरु जी दा शुकराना जिन्हां ने आप संगतां नूं दर्शन दिदारे दिते ने, महाराज दा बहुत बहुत शुकराना। अते जो माता जी अपने परिवार विच्चों इस तरह अकाल चलाना कर गए सी, ते परिवार लई बड़ी औखी घड़ी है, उन्हां दे रिश्तेदार, मैं सारिआं नाल अफसोस करदा। गुरद्वारा साहिब फ्रीमाउंट दे समूह सेवादार, सिख पंचायत दे सारे मैंबरां वल्लों अते अपने जंडी परिवार वल्लों बहुत बहुत अफसोस करदा। मैं बेनती करदा सत्कार जो ज्ञानी जगतार सिंह जी, जो माता जी दे सपुत्र ने सदा राजेश कुमार, वो आके जो गुरु साहब की ब्लैसिंग है, ये परिवार नू नाल लैके चलना अते परिवार नू हौसला दे के रखना, जिहड़ा ये दुख वा उन्हां नू दिलासा देना, उन्हां नू बेनती है कि वह मत्था टेक के गुरु साहब की ब्लैसिंग जो सरोपा है वह सरोपा ले लैण।

कर तरिया मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम बद पाया सुके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोग सुत बनता कोए न किस की धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाओ करिया उडे ऊड आवै साए कोसा तिस पाछै बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिदान ठाकुर करतल धरिया जन नानक बाल बाल साध बल जाइए

हर त्यावे हर त्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की भासी। जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन भल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहण तुद

तेरा नाम समाया, तुम आपे करता, तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अबर न कोए, तू कर कर वेखें जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला, तित सर वरड़ा है।

जब गर्क करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ कर्क करत हो कब हूँ तो मैं मिलत देहे तर सब हूँ जेते बदन शिष्ट सब तारे।

अल्लाह दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल्ला कृपा दुष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तन कमे हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शबय सके।

शापायु सम्मत सत्रह सहस प्रणिजा अर्धसहस्रम तेन गहजा पादर्व सुधी अष्टमी रववारा तीर्थ दर्व ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रया चरित्रे मंत्री पुप संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अभिजू।

हाथ उबारो हमरे सबैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता बिदनन्ना किशन जथा मत चरित्र उचारो चू कोय कबरे सुधारो कब भाय दोहरा जो निज ब्रह्म सो कहा सो कहे हूँ जग माहे ज्योते प्रभु को त्याय है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन द्वी एक है बेबिचार कशनाहे जल ते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखे समाहे दोहरा जब आयस प्रभु को भयो जन्म

पंथ चलाए तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान गाओ नितुड़त्याय है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुर की देह मोह कोटक विषण महेश।

इतनी सेवा प्रदान करने जी कीर्तन करते हैं पुला दी माफी बख्शनी। आप भाई सब जसविंदर सिंह जी लुधियाने वाले आप जनरल विवाह पुत्र बाणी कथा राय जोड़न गए उन्होंने पासों प्यार का सरमी

भय सहाई। सलोक जय साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत। अनाहो अना तूण है छुट है निकट न जाई हो दूत। सलोक महला पंजवा मन मह चितवो चितवनी उदम करो उठ नीत। हर कीर्तन का आहारो हर देहो नानक के मीत। सोहेला राह गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जय कर कीर्ता किए करते का हुए विचारो तित कर गाओ सोहेला सिवरेहो सृजनहारो। तुम गाहो मेरे निर्भो का सोहेला हवारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार। तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाहो तेल देहो सज्जन असिसड़िया ज्यो होवे साहिब सिउ मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन।

सर्व पूर्ण रस मंगल गुण गाय रहो जोग पेख सन्यास पेख जत जंगम का पड़ाए तपि तपि सर मन मैं पेख नट नाटक निरताए चौ में पेख्यो खट में पेख्यो दास अस्सी सिमरताए सब मिले को एक बखान तो किस तय कहो दुराए अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीम आये जरना नितिन कह बल भर जाये जय कट प्रगति आये पैर महला पंजमा निकट बजय सोबरा क्यों करे बिख संचय नित डरता फिरे निकट यर भेद न पाया बिन सतगुर सा मोहि माया नेड़ा नेड़ा सब को कहे गुरु पे बिरला को लहे राहो निकट न देखे पर ग्रह जाए दरभेरे मिथ्या कर खाए पैठ गौरी हर संग न जाने बाज गुरु है परम पलानिया निकट न जाने बोल को माया मोह मूठा है मूड़ अंतर वस्तु संदर जाए बाज गुरु है परम पलाये जिसमें से कर्म लिखे आले लाट सगुर से वे खुले कपाट अंतर बार निकट सोए जन नानक आवाय ना जावे कोई पैरो महला पंजमा जो तू रखे तस गौन मारे सब तुझे अंतर सगल संसारे कोट पाव चितवत है प्राणी सो हो जय कर चोज बिनाणी राखो राखो गर्भार तेरी संत रह दरबार रहो जन सेव्या निरपाव सुखदाता तिन पव दूर किया एक पराता जो तू कर सोई पन हो मारे न रखे दूजा खोए क्या तू सोचे मानस भान अंतर जामे पुरख सो जान एक टेक को आधार सब जन सृजनहार जिस ऊपर नजर करे करतार तिस जन के सब काज सवार तिसका रखा को सोए जन नानक पढ़ना साका कोई पैर महला पंजवा तो कड़िय जय होवे बाहर तो कड़िय जय विसरे नार हार तो कड़िय जय दूजा पाए क्या कड़िय जरा समाये मायम कड़े कड़ पछया बिन नाम प्राम प्राम प्राम खपया रहो थोकड़िए जे दूजा करता थोकड़िए जे अन्याय को मरता थोकड़िए जे किस जान नाही काकड़िए जा भरपुर समाही थोकड़िए जे किस हो तंगाण थोकड़िए जे भूल रंजाण गुर कया जो हो सब प्रभ से तब काड़ा छोड़ा चंद हम सोते प्रभ तुम्हें ठाकर सब कहो तेरा जो पावे त्यों करे न बेरा द्वितिया नास तिक्रिया सुमाए रखो पैज नानक शरण आए पर महला पंजमा बिन बाजे कैसे नृतकारी बिन कंठ कैसे गावन हारी जीर बिना कैसे बदेर बाप ना बिना बिरसाए सब काज ना बिना कहो को तरया बिन सतगुर कैसे पार परया राहो बिन जेबा कहाँ को भगता बिन सर्वना कहाँ को सुनता बिन निद्रा कहाँ को पेखे ना बिना नर कहीं ना लेखे बिन विद्या

नाम हमारे सचे रास गुरुदेव कहो सार हर कीरत मन नाम आधार नानक उदरे नाम पुनाचार अवर करम लोक पति आर पर महला पंजवा नमस्कार ताको लख बार ए मन दे ताको वार सुमन ताके मिटाय संताप होया नंद न व्यापाय ताप हीरो ही ऐसो हीरा निर्मल नाम जाजवत पूर्ण सब काम राव जाके सुख डेरा टाय है अमृत नाम से तल मन गाय है।

अंधविहार बंद मन तावे करने हार ना जी मैं आवे कर्द करत एवे दुख पाया पूर्ण होत न कर्द माया काम क्रोध लो मन लीना तड़मुआ ज्यों जल बिन मीना जिसके रखे हो यार आप हर नाम सदा जप जाप सा संगर के गुण गाया नानी सगुर पूरा पाया पर महला पंजमा अपने

नित भाई तारले सागर संसार रावजन को लिख्या हर एहो निदान सजन दरगह पावे मान सो सहजन गुण गाओ आगे मिले निथावे थाओ।

तार तो प्रसाद रंग रसमाने कड़कड़ अंतर तुम सुमाने तुमरी कृपा ते जपिय नाव सात संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दयात हुए दर्द विनाश तुमरी मयात कमल विकास हमरे आर जाओ गुरुदेव सफल दर्शन जाके निर्बल सेव दया करो ठाकुर ब्रह्म मेरे गुण गावे नानक तेरे पैर मोहल्ला पंजवा सब ते उच का दरबार सदा सदा तंक दुहार उच ते उचा दया का सान कोट गा मिठे हर राम तिसरनाए सदा सुख होए कर कृपा दंको मिल सोए राहो दंक कर्तव्य लख नंदा है दंक प्रवास सब घट माहे प्रगट व्या साधु कै संग भगत राधे अंध रंग दिंद तुट नही भंडार अखन में थप थप नहार जंका उक न मेट कोय सिर पात साचा सोय जिसकी ओट चसै की आशा दुख सुख हम राज सही पासा रख लिन साब जन का पड़दा नाने तिसकी उस्तद करदा पर महला पंजमा रोवन हरि रोज बनाया बलन बर्तन कौ सन बंद चित आया बुझ भरा कर जय कोय जनमन फिर सोग ना होए बेख्या का सब धन प्रसार बिरल किनो नाम आधार राव तिर बिद माया रही व्याप दुर बटानो तस दुख संताप सुख नाय बिन नाम से आए नाम निदान बड़पागी पाए स्वांगे स्यो जो मन रिजावे स्वांग उतारे फिर पछतावे मैं किसाया जस बर्तन हार तस प्रपंच मो बेकार एक वस्तु दे पावे कोय पूर्ण काज ताही का होए गुरप्रसाद जन पाया नाम नानक आया सो प्रवान पैर महला पंजवा संत की निंदा जो ने पवना संत की निंदा रोगी करना संत की निंदा दुख साम दान दे नंद कौ जाम

चतुर सुज्ञान सगल प्यान का सगल पयान का पवन सह जन अपने के हर मन बसाय पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान अमृत नाम कर कृपा संत लाए नानक साधु संग समाये पैर मोहल्ला पंजवा संत मंडल में हर मन वसाय संत मंडल में दुर्सव नसाय संत मंडल में जमा रीत संग संग हो एक परीत

सत्संग निर्मृपाणे संत मंडल में नाम बखाने संत मंडल का ने चरयासन संत मंडल में पाप नासन संत मंडल में निर्मल कथा सत्संग में दुखल नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण सास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैर महला पंजवा रोग कवन जा रखे आप ते जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे तिस ऊपर ते काल पर हराय सदा सकाई हर नाम जो चित आवे ते सदा सुख होवे निकट न आवे ता कह जाम राव जब ए हो ना सो तब किने उपाया कवन मूल ते क्या प्रगटाया अपे मार अपे जीवाल अपने बुद्ध को सदा प्रत्यय पाल सग जान कह हाथ प्रमेरो अनाथ को नाथ दुख पंजनता का है नाओ सुख पावन तिसके गुण गाओ सुन स्वामी संत ने अरदास जो प्राण तन तुमरे पास ए जग तेरा सब तुझे ते आए कर कृपा नानक सुख पाए पैरों महला पंजमा तेरी टेक रहा कलमा है तेरी टेक तेरे गुण गाए

सोई भगत जप नाम जप मन परगा सुगुरत मत लय कौ नानक पूरे पै पर मल्ला पंजमा सुखनाई बहुत तन खट सुखनाई पेख नित नट सुखनाई बहुत कमाए सर्व सुख हर गुण गाये सो सहज आनंद लाहो साध संगत पाय बड़ पागे गुरमुख हर नाम कौराओ बंधन मात पिता सुरबानिता बंधन करम तरम हो करता बंधन काटन हर मन वस तो सुपाव निज कर वस सब जाचक प्रभु देव निवार गुण दान बेअंत अपार जिसनु कर्म करे प्रभु अपना हर नाम तिन जन जपना गुरु अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुण तास कौन तुमरी शरणाई जो पावे तो रखो गोसाई पर महला पंजमा

कर कृपा अपने सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, राव रोग दुख गुरु शब्द निवारे, नाम खुद मन पे तर सारे, गुरु पेट तो मन पे आनंद सर्व धन ना भगवंत, जन्म के मिटे जम त्रास, सा संग कमल विगास, गुण गावत नेचर विश्राम, पूर्ण सगल काम, दुर्लभ दयाई परवान, सफर जप हर हर नाम, कौना ने प्रभु कृपा करे, सास गिरास जप हर हरि, पर मोहल्ला पंजमा, सप्ते उचारा का नाओ, सदा सदा तक गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख बस मन आए, सिमर बना तो साचा सोए, हालत पर तुमरी गत हो, राहो पुरख निरंजन सजनार, जी जन देव आहार, कोट खच खन बख्शनहार, भगत भय सदा नचार, साचा तन साची वड्याई, गुरपुर तिन चल मत पाई, कर प्रा जस राखनहारा,

दयाल। भैरव महला पंजमा जस मृत मन होए पर गास मिटे कले सुख सह निवास तिस प्राप जस प्राप दे पूरे गुर की आपाय सेव सर्व सुख प्रभर नाव आठ पैर मेरे मन गौर जो इच्छे सोई पर पाए अर्कन मन वसाए आवण जान रहे हर त्याय।

ना रुदाय हर सिमरन के सगले पहला हर सिमरन बाओ माए अकेला जात आजात जपै जन कोई जो जपै तिसके गत होई हर का नाम जपिए सब संग हर का नाम का पूर्ण रंग नानक प्रभु कृपा चार सा सरद चार पैरो महला पंजवा पे सास अपे भेद अपे गड़गड़ जान भेद जो स्वरूप जाके सब वथ कर्ण कान पूर्ण समरथ प्रभु की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुख आराधो दुश्मन दुख न आवे निर रहो आपे बाण त्रण त्रिपुण सार दाके सुत प्रया संसार आपे सब शक्ति संजोगी आपे आप निर्वाणी आपे भोगी जातगत भेखो तत् तत् सोए तिबंधु जनाई कोय सागर त्रिय नाम कै रंग गुणगावे नानक साध संग

मनयाय राम राम संत सदा सहाय एकर बाहर नाले परमेश्वर राव रहास पूर्ण सब ठाय राव तन बाल जोबन जोगत गोपाल जे प्राणत सुख प्रत पालो अपने दा को दे रख हाथ निमक न छोड़ सदे साथ हरसा प्रीतम न कोय सर संभाले साचा सोय

नानक कै मन एहो पुरखारत प्रभु मारे सारे सुवारत पैर महला पंजमा पैको पौ पड़िया सिमरत नाम सगल ब्याद मिटे जय गुण के दास कै हो पूर्ण काम राव हर के लोग सदा गुण गावे तिनको मिले पूर्ण ताम जानका दस बाछ दिन राति पुनित धर्म राय जाम।

मेरा स्वामी करने हार कोट बार जाई बलिहार साधु तुरप नित करे मन के बेकार मिटे प्रभ सिमरत जन्म जन्म के मैल हरि राव जाके ग्रह में सगल निदान जाके सेवा पाइये मान सगल मनोरथ पूर्ण हार जी प्राण भक्तन आधार घट घट अंतर सगल प्रकाश जब जीव भगत गुण दास

गोविंद मुरारि। पुत्र प्रहलाद स्यों कहया माए पर विरत ना पड़ो रही समझाए निरपदा तर्ज मेरे नाल।

सवारे हमारा क्या ना सुना है अपने कार्य सवारे सब नगरी में भगत रड़ाए दुस्तभा का के चना वसाई संडे मरके की पुकार सब दैत रहे चख मार पुत जना के पत राख सोई किते कह कहया क्या होई किरत संजोगी दैत रा चलाया हर नाम बुझे तिना भुलाया

राव संत जना को तम जो न साकाय रथ अंत दुख न लाई आप तरह सगल कुल तार जो तेरी शरणाई भगता के प्याज राख तू आप तेरी बढ़ियाई जन्म जन्म के कर दो काट दुदार ते नाई हम मुड़ मुगत कछ बुझे नाई तू आप दे बजाई जो तू पावे सोई कर न करना जाई जग तो पाए तो धंधे लाया मुंडे कार कमाई जन पदार्थ दुए हरिया सब दे सुरत न पाई मन मगम रचन किचु न सुजय दुर्मत अज्ञान अंधारा पव जल पाना पाव कभी डुम बिन गुर सिर पर सच शब्द रत जन सच प्रभ आप मिलाए

कोट में मा जाके निर्मलहंस कोट सत जाके करत ब्रह्मंस कोट परलो उपत निमिख माए कोट गुणा तेरे गण न जाए कोट ज्ञानी कथ ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान कोट तपे सर तप ही करते कोट मुनि सर मोन में रहते अवगत नाथ अगोचर स्वामी पूर्व रहा कट अंतर जामे जत खत देखो तेरा बच्चा नानक गुर क्यों परगासा परमल पंजमा

नाम पहचाना। ओट जात कुल दो बेसारे सुन सहज में बनत हमारे हमरा चगरा रान को पंडित मुलना छाटे दो। राव बन बन आप आप रावो जय नहीं आप ता होए गावो पंडित मुलना जो लिख दिया चार चले हम कछु ना लिया।

जब लग विकल्प ने बने पजल रे मनुसार रंग पानी अपना पजस पजस कब पाई आवे अंत न पजया जाई जोग कर सोई अब सार फिर पछताव न पाव पार सो सेवक जो लाया सेव तिनके तिन्ह पाए निरंजन देव गुरु मिलता के कुले को पाठ बन आवे जो निबाट यही तेरा अवसर यही तेरी बार कड़पितर तू देख विचार कैद कबीर जीत कह हार बो बज कहो पुकार पुकार सेवके पुरी बस है बुद्ध सार तह तुम मिल कह करो विचार ए तुत की सोज पर कौन कर्म मेरा कर कर मर निज पद ऊपर लागो ध्यान राजा राम नाम मोरा ब्रह्म ज्ञान राव

2000 ताने बाहर जाता भीतर आने गगन मंडल में लश्कर का करे सो सरदान छत्र सिर तारा जोगी गोर गोर करे हिंदू राम नाम उचराए

जाए तो कई काले जाए जाए। ठाकुर हमरा सर्व लंता सर्व जी को प्रावधान देता रहो अंतर देव न जाने अंध। परम का मोहया पावे फंद ना पत्थर बोले ना किस दे फोकड़ कर्म ने फला सेव। जे मृत को चंदन चढ़ावे उसे को कवन फल पावे। जे मृत को विषमय रुलाए ता मृत का क्या कर जाए। ख्यात कबीरों क्या हो पुकार समय देख सकत गवार। दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत सुधा सुखाले।

खबे माया सिमोनि पाई जत जत जत जत तर गाई राव पंखे मृग माया मेरा थे स्वाकर मखिया लख संतापे तुरे उत माया में पेला सिद्ध चौरासी माया में खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूर्य चंदा तपे तपे सर माया में सूता

लूबर बिरख मोल माया में परा माया अंतर पिन देव सागर इंद्र अर्थ अर्थेव कह कबीर जस उदर तस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब रखा देख नहीं सरे

सिमर दुख पंजना राव। जब रसिंह रह बन माहे तब लग बन फुल नाहे जब ही श्यार सिंह को खाए।

राहुल बिलाए सतर सह सला रह जाके सवा लाख पै काबर ताके सेख जो कई अत कोट अठासी छपन कोट जाके खेल खासी मो गरीब के को गुजरावे मदर दुर्मैल को पावे राव तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिरे दीवाना

द्वारा कह कमेर अब कही है काहे सा संगत बैकुंठ आए क्यों ले जाए गाड़ का पाई दोवर कोट गर ते बरकाई राव पांच पचीस मोह मत मत सर आडी परबल माया जन गरीब को जो न पहुंचे का करूं रागु राया काम के बारे दुख सुख दरवाने पाप पुन दरवाजा क्रोध प्रधान मा बड़ दुंदर तय मन मावा सि राजा स्वाद सना टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तिसना तिर राय कट पितर यो गढ़ लियो न जाई प्रेम पलिता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे पर जालिए कह चोट सजाया सत संजोग ललन लागा तोरे दो दरवाजा संग संगत अरगुर की कृपा ते पकड़ो गढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन के कटकाल पै भासे दास कमीर चढ़ो गढ़ पर राज लियो अविनाशी गंग गोसाइन गैर गंभीर जंजीर बांध कर खरे कबीर मरना डिगा तन काय को डराए चरण कमल चित रहो समाय रहो

श्री वाहिगुरु साहब जीओ सतनाम, श्री वाहिगुरु साहब जीओ गौड़ी सुखमणी महला पंजवां श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सत गुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः, अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मिटाव। सिमरो जास बसंपर एकाय, नाम जपत्या गणत्या अनेकाय, वेद प्राण सिमर सुधाखर, कीने राम नाम एक आखर। किनका कि जिस जीव सावे, ताकी महिमा गनी न आवे, कांखिए के दर्श तुहारो, नानकुन संग मोहे अदारो। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभु कै सिमरन गर्व न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै, प्रभु कै सिमरन काल पर हरै। प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै, प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अण दिन जागै, प्रभु कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साध कै संग, सरबण दान नान कर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान त्यान तत बुद्ध, प्रभु कै सिमरन जपता पूजा, प्रभु कै सिमरन बिनसे दूजा, प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगे मानी। प्रभु कै सिमरन होए सो भला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला, से सिमरे जिन्हें आप सिमराए, नानक तां कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा, प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझाए, प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझाए, प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए, प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन परवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरे से बेमोताजे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा विनासी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगे रवाला। प्रभु को सिमरै से परे उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन अणद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे, संत कृपा ते अण दिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुणबानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख, प्रभु सिमरन कांत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरणी पयार, सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए। हर सिमरन पय सिद्ध जति, दाते हर सिमरनी चौकुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगले अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरम कर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर्द दुख पंजना, कड़ कड़ नाथे अनाथ, सरन तुमारी आयो नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सतमीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सुहाई, जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै, जय मुस्कुल होवे अत पारी, अर को नाम खिन महे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरे, अर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख नेरे, सगल सेठ को राजा दुखी, अर का नाम जबत सुखिया, ला करोरी बंधन परे, हर का नाम जबत निस्तरै।
अनक माया रंग तिख नाम जावे, हर का नाम जब त्यागावे, जय मार क्यों जाते अकेला ते हर नाम संगो तो सुहेला, ऐसा नाम मन सदा त्याइये, नानक गुरमुख परम गत पाइये, छूट नहीं कोट लख बाही, नाम जब ते पार पुराही, अनक बिघन जय सिंघारे, हर का नाम तत्काल उधारे, अनक जून जन्मे मर जाम, नाम जब त पावे बसराम, हौ मैला मल कबू न धोवे, हर का नाम कोट पाव खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइये साध कै संग, जय मार के गने जाय ना कोसा, हर का नाम हुआ संग तोसा, जय पैंडे महंत गुब्बारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा को ना सुयानू, अर का नाम तय नाल पछानू, जय महा भ्यान तव तब काम, तय अर के नाम की तुम्हें उपर छाम, जहां त्रिखा मन तुझे करखाय, तय नानकार अर अमृत बरखाय, पहुजना की बर्तन नाम, संत जना के मन बसराम, अर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जन कोट, अर जस करत संत दिन रात, हर रे उखद साधक मात, अर जन के अर नाम निधान, पार ब्रह्म जन की नो दान, मन तन रंग रते रंग एक, नानक जन कै बिरत बिभेक, हर का नाम जन को मुगत जुगत, हर के नाम जन को त्रिवत भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै उड़स तानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओतपोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे, हर की भगत मुगत भव करे, नानक जन संकेते तरे, पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सवती उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवरणा होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए, सलोक भव सातर भव सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नामे अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमरत वख्यान, जोग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगल त्याग मन मध्य फिरे आन, क प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे का राती, वर्तनेम करे बहु भाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चर जीव, महावदात पीसर थीवे, अग्नमय होमत प्राण, कनक सुवह भरभूम दान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संयमयत साधन, निमख निमख कर शरीर कुटावे, तो पियो में मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुटे, गर्ब गुमाना मन ते हुटे, सोच करे दिन सिर रात, मन की मैल न तनते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया, टरे जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध काव काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियान पजम का भव व्यापे, अनक जतन कर त्रिसरणा त्रापे, भेख अनेक गरणी बुझय, कोट पाप दरगे नहीं सिजय, छूट सुनाही उपयाल मुय व्यापे, माया जाल वर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सद गावे, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग होमै छोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साजना की सरणी परै, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक तां कै बल बल जासा, सगल पुरख मैं पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटे अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिय सब ते ऊंचा,
ਜਾਂਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀਰੀ ਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਘੱਟ ਘੱਟ ਚੀਨਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ ਪੇਖਾ ਸਗਲ ਸ੍ਰੇਠ ਸਾਜਨਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸਮਦਰੇ ਟੇਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਪੁਣ ਨਹੀਂ ਲੇਪਾ ਨਿਰ ਤਨ ਕੋ ਤਨ ਤੇਰੋ ਨਾ ਉਨ ਥਾਵੇਂ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾ ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਵਾਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੀ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰਣ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈ ਉਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਾਸ ਸੁਨਰਸਨ ਬਖਾਨੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤੇ ਉਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੈ ਘਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਆਨੇ ਆਸੂ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਵਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਨੇ ਉਬਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ ਪਰ ਜੋਬਣ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਗ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਣ ਨਿਰਗੁਣਾ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸ਼ ਲਉ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰੀ ਉਪਰ ਸੁਖ ਵਸੈ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਗਸੈ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾਉ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਪ ਕੇ ਅਮੁੱਲਾ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੇ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਸਾਦ ਵਸਾ ਦੀਨੇ ਅਸਤ ਭਾਵ ਕਰਨ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਸਹਿ ਦੁਖ ਮੂੜੰਦ ਵਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਦੰਦ ਜੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੇ ਗਵਾਰ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਵਨਿਤ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇ ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਦ ਸਦਾ ਝੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਦਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੇ ਦਰਗੇ ਮਾਨ ਤਿਸੇ ਵਸਾਰੇ ਮੁਗਦੇ ਅਜਾਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਣ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਉਪਾਰ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੁਵਸਤਰ ਕਰ ਮਾਨੈ ਜੋਵਣ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੈ ਛੋੜ ਜੈ ਤਿਸਕਾ ਸਰਾਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੈ ਚੰਦਨ ਲੇਪਿਓ ਤਾਰੇ ਧੋਏ ਗਰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਭਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅੰਧ ਖੂਹ ਮੈਂ ਪਤਤ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛੁਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੇ ਲੋਭ ਸੁਵਾਨ ਅੰਤਰਗਨ ਬਾਰ ਤਨ ਸੁਆਹ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰਿਆ ਥਾਹ ਜਾਂ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸੁਮਾਤ ਸੁਨੇ ਅੰਦਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ ਕਰ ਗੈ ਲਿਓੜ ਨਿਭਾਵੇ ਕਹਾਂ ਬਜਾਰਤ ਬੂਝੇ ਡੋਰਾ ਨਸਕਈਏ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ ਕਹਾਂ ਬਿਸਨ ਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂਹਾਂ ਉਸ ਗਵਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ ਸੰਗ ਸੁਹਾਈ ਸੁ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਬਸੇ ਅਣਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਮਾਨੇ ਮਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੇ ਮੂੜੇ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਾਂ ਲੋਭ ਧਰੋਹ ਆਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰੱਖ ਲਿਓ ਆਪਣ

पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे। कोय न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम तो सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी सलोक। दीन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सुहाए नानक कहू न सिजई बिन नावे पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गवावे एक भी ना दे दस पीहर लै तो मूड़ा कहो कहा करे जे ठाकर सो नाही चारा तांको की जे सद नमस्कारा जांके मन लागा प्रा मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया गणत सुहाव अपनी दे रास खात पीत बरते आनंद उलास अपनी मान कछ वार सुहाल ज्ञानी मन रोस करे।

पाए। जिसकी बस्त तिसे आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने, माथे उते चौगन करे निहाल। नानक साहब सदा दयाल, अनक पाद माया केत, सर्प रोपत जाने नेत, बिरख की छाया स्यों रंग लावे, बिन स्यों मन पछतावे। जो दिसे सो चालन हार, लवट रहो ते आंदी अंधार, बटाउ सो जो लावे ने हे, तांको हाथ ने आवे के हे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तन धन कुटंब सुभाया, मिथ्या में ममता माया, मिथ्या राज उबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या राथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखस्ता, मिथ्या त्रो मोह अभमान, मिथ्या पस्यु पर करत गुमान, अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या अस्त पर दर्ब कोहरे, मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरह रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद, मिथ्या चरण पर बेकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हर नाम लय। बिरथी सागत की आर जा, साच बिना के होवत सूचा, बिरथा ना बिना तन आंद, मुख आव ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बेहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जय कट बस्य वरनाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कछे अवर कमावत, मरणी प्रीत मुखों गंढ लावत। जाननहार प्रभु परबीन, बार भेख ना काहू, पी नवर उपदेसे आप ना करे, आवत जावत जन्मे मराय। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता, करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे मानाय। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा, उपाव सियान सगलते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भावे तिसलै लड़ लाए, थान थनंतर या समाय, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नान करी सलोक। काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अमेव, नानक प्रभु शरणागति, कर प्रसाद कर देव अष्टपदी। जय प्रसाद छति अमृत खाहे, ते ठाकर को रख मन माहे, जय प्रसाद सुगंध तन लावे, तिसको समृत परम गत पावे, जय प्रसाद बसे सुख मंदर, तसे त्याय सदा मन अंदर। जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसनाड, पैर सिमरो तिस रसना, जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याये त्यावन जोग। जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तसे त्याग त्यवर लुभावे, जय प्रसाद सुख से सुवीज, मन आड़ पैर तांका जस गावी जय। जय प्रसाद तुझ सब को माने, मुख ता को जस रसन बखान, जय प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभु जी जबत दरगे मान पावे, नानक पद सेती घर जावे, जय प्रसाद अदुग कंचन देही, लिवलाव तिस राम स्नेही, जय प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कैत। जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके, मन सरणी पर ठाकुर प्रवतांक, जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे, जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक तांकी भगत करे। जय प्रसाद अभूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय, जय प्रसाद अस्वस्त असवारी, मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी, जय प्रसाद बाग मिलख तना राग प्रोय, प्रभु अपने मना जिन तेरी मन।

संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परमगत पावे, जय प्रसाद सो सह समावे। ऐसा प्रभ त्याग वरकत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू तांको जाप। जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा जूरे। जय प्रसाद तू पावे साच, रे मन मेरे तू तांस्यो राच। जय प्रसाद सबकी गत होए, नानक जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाहो, आप गुवाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मति उत्तम होए। सर्वण दान प्रभु तेरी मैं आप, कछु न किनु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगमे अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुनमीता नानक बिनवंता, साधना की अचरज कथा अष्टपदी। साध कह संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध कह संग मिटे अभिमान, साध कह संग प्रगटे सो ज्ञान। साधक संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रामै समानी। साध के संग अगोचर मिलाए, साध के संग सदा पर फुलाए। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग सबकी रेन, साध के संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतु तावे, साध संग अस्तत मन पावे। साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत, साधु के संग महापनीत। साध संग किस स्यों नहीं बैर, साध कै संग ना बीगा पैर। साधक संग नही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साधक संग नहीं हो ताप, साधक संग तजे सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग न कबहू तावे, साध कै संग सदा सुख पावे। साध संग बस्ते गोचर लहे, साधु कै संग अजर सहे। साधु कै संग बसे थानी उच्चे, साधु के संग मैल पहुंचे। साधु कै संग दृढ़े सब धर्म, साधु के संग केवल पार ब्रह्म। साधु कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान।

संसार पर निस्तराय, साध कह संग लगे प्रा मीठा, साधु कह संग घट घट डीठा, सत्संग पयाग्ञाकारी, सत्संगत पई हमारी, साधु कह संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साधकी महिमा वेद न जाना है, जेता सुने तेता बखियान है, साधकी उपमा तेह गुण ते दूर, साधकी उपमा रही भरपूर, साधकी शोभा का नाही अंत, साधकी शोभा सदा बेअंत, साधकी शोभा उजते उची, साधकी शोभा मूजते मूची, साधकी शोभा साध बने आई, नानक साध परा भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवरणा पेखे, एक सबिन कोय नानके लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लेप, जैसे जल में कमले अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तोल पवान, ब्रह्म ज्ञानी का धीरजे का ज्यों सदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का गुनाओ, नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैला लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी का

आकाश जैसे तरि उपरि आकाश, ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा, मन अपने सबते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल कीरी ना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की धृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयासु, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनासु, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारी माह, ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी दे तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ सांग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम उदार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहजन वास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता, ब्रह्म ज्ञानी के हुए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जस करे प्रभया, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जय अध्यक्षर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान, निमुख निमुख ठाकर नमस्कारे, नानक परस सगल निस्तारे अष्टपति। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर तेरे रूप न पेखे नेतर, साध की टहल संत संग हेत, कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद भिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते तरै, इंद्री जेत पंच दुख ते रहत, नानकोट मदे को ऐसा परस, बैसनु सो जसी ऊपर सो प्रसन्न, विसन की माया त्यो हे भिन्न, कर्म कर तो वे ने कर्म, तिस वैसनु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग्राच, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब उपरोवत कृपाल, आप दृढ़ अवरे नाम जपावे, नानक्यो बैसनु परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन सह सगला भरम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सात संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की माति उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पे बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन पर बोधै, राम नाम आत्मै सोधै, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कहे उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जूण न आवे, वेद प्राण सिमरत बूझे मूल, सुख मैं जाने असथूल, चौवरणा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरणा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सात संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर तारे, पास प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व रोग का खुद नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत किते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म।
जिसके मन पर ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निगट निगटर जान, सोदा दरगे प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सो जी पराए, सगल संग आत्मी उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसारक तैसा ससोग, सदा नंद ते नहीं बेयोग, तैसा स्वर्ण तैसी अर्स माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक्यो पुरख कहिए जीवन मुगत, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जेत जेत घर राखे तैसा तिरनाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ भावे सोई फन हो।

बहुबुद्धि अनक प्रकार अष्टपदि कई कोट होए पुजारी कई कोट चार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन परमे उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धारे कई कोट कव काव विचारे कई कोट नमतन नाम ते आवे नानक करते का अंत न पावे कई कोट पए अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट किरपन कठोर कई कोट भिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्ब को हिरे कई कोट पर दुख ना करे कई कोट माया सरमाए कई कोट परदेश परमाहे जित जित लाभ हो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पवन पानी वै संतर कई कोट देशभू मंडल कई कोट सस्यर सूरन खेतर कई कोट देव दानविंदर सिर छतर सगल समगरी अपना सूत धार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरतिर शास्त्र कई कोट कीर्तन सुबोध कई कोट नाना प्रकार जनता कई कोट की चर जीव कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीव कई कोट जख किन्द्र प्रसाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गाच सब ते नेर सब हूते दूर नानक आविल वितरिया भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्मे जीवे मरए कई कोट बजूनी फिराए कई कोट बैठती खाए कई कोट काले थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंता जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किछ प्रभु के हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिवरागी कई कोट प्रभु को खोजन ते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रभु प्यास तिन को मिलियो प्रभु अविनाश कई कोट मांगे सत संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सु प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट खाणी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट होए अवतार कई जुगत कीनो बसथार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बपात प्रभु ब्रह्म सुमात ताका अंत न जाने कोए आपे आप नानक प्रभु सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तुन होवते आत्म प्रगास

अनक भोग बिखिया के करह न तृपता वे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करन करावण आपे आप सदा सदा नान कर जाप करन करावण करने हार इसके हाथ काम विचार जैसी दृढ़ करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए योग चकीनो सो अपने रंग सब ते दूर सबू कै संग बुझे देखा करे बबेक आप है एक आप है अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सदी रिया सुमाय आप उपदेसे समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप कीनो आपन विस्थार सब काछ उसका करने हार उस दे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए

न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद किने मुखियानी, सच सच सच सब की ना कोट मदे किने बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूपत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपे नानक मन प्रीत। सलोक संत सरण जो जन पर सो जन उधर नहार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत होए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, संत संग नानक संत संग निंदक भी तरै। संत कै दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन कागज्यों लवाए, संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत कै दुखन त्रिगत जून किरमाए। संत कै दुखन तृष्णा में जलाए, संत कै दुखन सब को छलाए, संत कै दुखन तेज सब जाए, संत कै दुखन नीच न चाए, संत दुखी का था को नाहे, नानक संत भावे ताए भी गत पाए। संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक अखन टिकण न पाई, संत का निंदक महा हथियारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखी आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख में दुख, नानक संत भावे ता उसका पिए मोख, संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डाण लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दुख ना सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाव, नानक संत भावे ता लय मलाए। संत का दुखी अद बीज ते टूटै, संत का दुखी किते काज ना पहुंचै, संत के दुखी को दयान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृत की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी गौर न रखन हार, नानक संत भावे ता ले उबार। संत का दुखियों बल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाव की दन नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बाड़ तिल खेत में दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुरी पया, नानक जो तिस भावे सोई थे आ, संत का दुखी बिगड़ रूप जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सुजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की पुजे न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना त्रिष्टे कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मेटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घट तिसके होए करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास ग्रास, सब कछु वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजो से अनप सुरजन हो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पहु जाए। अष्टपदी

मिल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर लै जियो। नैनो पेग ठाकर का रंग साध संग बिनसे सत संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म सर्वनार कथा हर दरगे नानक उज्जल मथा। बड़भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार से तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछाने तुत तो की सो जी जानै।

गुर प्रसाद अपने आप सुझाए, तिसकी जानो तृष्णा बुझाए, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अनदन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाणे के ऊपर, जिस जन की आशा तिसकी कटिए जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मन चेते आवे, सो संसेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कौ किसते डराए। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बूझया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल। नह किछ जन्म नह किछ मरह, आपन चलते आप ही करै, आवण जावण दृष्टि अनदृष्टा, ज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगल में आप, वनक जुगत रच थाप उथाप। अविनाशी नाई किच खांड, तारन तारे ब्रह्मांड, अलाख्य अभे पुरख प्रताप, आप जपाय नानक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगले उदारण, प्रभ के सेवक दुख बसारण, आपे मेल कृपाल, गुर का सब जप है निहाल, उनकी सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागे, नाम जपत पावे बिसराम, नानक तिन पुरख उत्तम करमान। जो किश करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग, सह सुभाए हो वै सोए, करणे हार पछाणे सोए, प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जेते उजेते समाए समायो, सुख निधान नू बनियाए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एको जान। सलोक

ना ही मोहे प्रभु की जो सगल घट सो है तनवंताय क्या को गर्भ है जा सबके तिसका दिया दरबे अद सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना कहता आवे जे को वैद तार तिस दे नार जाने गावार जिस गुर प्रसाद टूटे और रोग नान सूजन सदा रोग ज्यो मंदिर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस थमन ज्यो पाखाण दाव चढ़ तरे प्राणी गुर चरण लगत न स्तरे ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे तन संतन की बाछो तूर नानकी अर लोचा पूर मन मूर काहे बिल लाइये पुरब लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभ देवन हार वरत्याग तू तसे चितार जो काछ करे सोई सुख मान भूला काए फिरे अजान कौन बसते आई तेरे सांग लपटरे रस लोभी पतांग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ता जेब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोला

हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संग प्रभदेव निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार।

राष्ट्रपति जाबे कार्य कछ ना दृष्टित पाप पुन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात

मोह कांक सोभत भरम। आपन खेल आप वरतीजा, नानक करणे हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी।

जय आचाल अछेद अभेद सुमाया ऊहा किसे व्यापत माया आपस को आपे आदेश तह गुण का नाही प्रवेशा जय का एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता।

को नाथ। जिस राखे तिस कोय ना मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे, तिस ता जबर का को जाए। सब श्रेक निरंजन राय।

दुख दर्द मन ते भउ जाए। साच व्यापार करो व्यापारी दुर्गन वह खेप तुमारी एका टेक रखो मन माहे नानक बहुर न आवे जाए। ते ते दूर कां को जाए उबरे राखना हार ते आए निरभउ जपे सगल पव मिटाए प्रभ कृपा ते प्राणी छुटाए। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन हो सुख। चिंता जाए मिटे अहंकार तिस जन को कोई ना पहुंचनार। श्री ऊपर ठांडा गुरसूरा नानक ता के कार्ज पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्टा दर्शन पेखते उदरत श्रेष्ठा। चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरुख प्रधान। जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल। अमर पै अमरा पद पाया सा संग नान कर त्याया श्लोक।

आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार, चुपै चुप ना होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सहस सियाणपा लख होहे ता इक ना चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल।

जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार। आख है मंग है देह देह, दात करे दातार। फेर के अग्गै रखिया जित दिसै दरबार। मुह के बोलन बोलिए जित सुन तरे प्यार।

मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछताए। कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन के शुद्ध। मन्ने मुहे चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पत स्यो परगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए।

वै सचियार धवलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिसते पार तलै कवण जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम।

जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कह है सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन एह लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए।

इति सुरत न पाइया नदियां अतः वाह पवह समुंद न जानिय है समुंद साह सुल्तान ग्रह सेति मालतान कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मन हो न विसरह अंत न सिफते।

पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले। गाव है मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले। गावन रतन उपाए तेरे अठ सठ तीर

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वज है नाद, आप नाथ

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बौ लख हो है, लख हो वह लख वीस। लख लख गेड़ा आखिया है,

संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरत

तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई ओथे पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वैसंतर, केते कान महेश, केते बरमे काड़त घड़ी है, रूप रंग के वेश।

तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्कर बकर फिरे चत्तर चक मन ही पुरतीन। लोक चौदह के बिखै जग जापी जह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख अदेश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अपेस। अंग राग नरंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र ना जा नहीं जह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मद पार छंद तो प्रसाद। गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहो साहन साहो राजान राज पान आन पान। देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग अबा अपंग गतमित अपार। गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपैन काम आतुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाड अंड अंड बाड चाचरी छंद तो प्रसाद। गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद। चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर माने चत्तर चक्कर दाने चाचरी छंद। न सत्रै न मित्रै न परमं न पित्रै न कर्मं न काये अजन्मं अजाये न चित्रै न मित्रै परे हैं पवित्रै प्रथिसै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद तो प्रसाद। कथते के आछिज देसै के आपिज भेसै के आगंज करमै के आपंज भरमै के आपिज लोकै के आदित सोकै के अवधूत बरनै के विभूत करनै के राजं प्रभा हैं के धर्मं तुजा हैं के आशोक बरनै के सर्वा अपरनै के जगतं कृति हैं के क्षत्रं क्षत्रिय हैं के ब्रह्मं स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आद अदेव हैं के आप अपेव हैं के चित्रं विहीनै के एक अधीनै के रोजी रजा कह रही मैं रहा कह के पाक ब्याव है के गैबल गैव है के अफबल गुनाह है के साहन साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीना के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र काला के सर्वत्र पाला के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सुख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देसा के सर्वत्र पेसा के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य के सर्वत्र जाप्या के सर्वत्र थाप्या के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलिम के परमं फहिम के आकल अलाम के साहिब कलाम के हुसनुल वजू है तमाम रुजू है हमेशल सलाम सलिखत मदाम गनिमल सिकस्ता गरीबल परस्ता बिलंदल मकान जमीन उल जमान तमीज उल तमाम रुजुअल निदान हरीफल अजीम रजायक यकीना नेकल तरंग है अपेद है अपंग है अजेजुल नवाज है गनिमल खराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदि रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुपहं सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी उल प्रवास है
निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित्य है सुनित्य है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्तार सावल छंद त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसाकं श्रीकः अमितो अमीकः सदैवं प्रभाः अजाः अजाः भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जुहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामर करीम हैं के राजक रहीम हैं के रोजी देहंद हैं के राजक रहिंद हैं क्रिमल कमाल हैं के हुसनल जमाल हैं गिनिमल खराज हैं ग्रिबल निवाज हैं हरिफल सिकन हैं उरासर फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तल जुबा हैं के साहिब करा हैं के नरकं प्रणास हैं बहस्तल निवास हैं के सर्वल गवन है हमें सलरवान है तमामल तमीज है समस्तल अजीज है परं परम ईश है समस्तल अधीश है अदेसल अलेख है हमेशल अपेख है जमीनल जमा है अमिकल इमा है क्रिमल कमाल है के जरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है माध पार छंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मन सलाम हर नर अखंड बरनर अमंड अनपव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जलथल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जलथल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आजान बाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछ जगात आजिज न बात अनचन जगात अणरंज बात अण टुट भंडार अणठट अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अण ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणाल्या है अरकाल्या है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्य है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नरनायक है खलकायक है विश्वम पर है करुणालय है नृपनायक है सर्वपायक है भव भंजन है अरगंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख
अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी क्रिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियं करियं क्रिमल रहीमे चतर चक्रवर्ते चतर चक्र भुगते स्वयं भव सुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग विभूते वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री मुखवाक पातशाही दसवें तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जती के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मती के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखित प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हों ते एक रति बिन एक रत्ती के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पावन के गान को जात निवारे भारी भजान के भूप भली बिद न्यावत सीस न जात बिचारे एते भय तो कहा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरै सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गनै नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक बसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पावन आहार जति जत तार सबै सु विचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देश मलिंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सु एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जाय तो तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातव जौंतर लोको राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक सुंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस है भगते नर फेर ना देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो भक्त ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुन्द्र न लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐस सो बैस बतायो साच कहो सुन लिहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धर्यो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछा को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री मुखवाक पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिया सब बैरन को आड़ संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे अबरिया मरण काल का त्रासन वरिया हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुर जो करियो रक्षा
राख लिहो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो परि चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिशन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी हो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखे सुख पाए साधन के सुखे एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूँ तम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही तेरा तिन रालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्वकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सिव निरंकार का चिन्हत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखाना जाय पसारा कह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक भयो राव कही भूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर अकैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आदि जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करोरण काता जे स्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत होवै मरे पुरख जावन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल कौ एक बार ते अहै ताके काल निकट नह अहै रक्षा होय ताहे सब काला दुष्ट अरिसट टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरिहो ताके ताव तन कमह हरिहो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट चाह छ सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारद दुष्ट दोख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दै लिहो उबारी सर्व ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किलविख सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन को छय करता श्री अस्तुर जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावै सोई दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़िल सुना गुंग जो याहि सुरस न पावई सुना मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द भौ निकट ना तिन नरके रह हो जो याकी एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुन तीन कहि जय भाद्रव सुदी अष्टमे रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो

रही। प्रथम पैरवी बिलावली पुनिया की गावह बंगली पुन असलेखी की पई बारी ए पैरव की पांचो नारी। पांचम हर

शुद्ध मन सगल पवन की शुद्ध मन मोह चोटा ना खाए मन जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक न पाए मन पास्यो प्रगट जाए मन मग न चले पंथ मन धर्म सेती संबंध।

ओंकार असंख जापे असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचारे असंख सती असंख दातारे असंख सूर मोह पाक सारे।

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वढ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़िया।

गावन पंडित पढ़न रखी सारे जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच्छ पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ सड़ तीर्थ नाले गावह

सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर विखै कीता अपना जिव तिसदी वडियाई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो सहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करह बेभूत खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीते आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहते जुग जुग एको वेश

अधिकारे आदेश तसय आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भव लख होहे लख वह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए तराहे पत पवड़िया चढ़िया हुई इक्कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुप नह जोर जोर न मंगण देन न जोर जोर न जीवन मरण नह जोर जोर न राजमाल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचारे जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर।

संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकर तुम पहे अरदास जी।

जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि आज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ धैर अच्छा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सभा तुम कावो आफात दा मोह बचावो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को संघरिया पूर्ण होई हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तो मैं छाड़ कोई अबर न त्याऊं जो बर जाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है तुम तुन सत्र हमारे मारिया आफात दा मुझे उबरिया मरण काल का त्रासन वरिया हो जो सदा हमारे पच्छा सरिया तू जू करे हो रक्षा राख लियो मोर राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंध दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिवजू अवतारा काल पाए कर बिसर प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी सब की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोग सुवारा नमस्कार हताहे मारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदंते काय अवतारा सोई गुरु समझो हो मारा नमस्कार तुसी को मारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सबकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मुदगियो घट घट के अंतर की जांत भले बुरे की पीर पछांत चीटी दे कुंचरिया स्थूला सब पर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक पीर पछाना घट घट के पड़पड़ की जाना जब कर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब आ कर्ख करत हो कब हूं तो मैं मिल तो देह तर सब हूं जे ते बदन सरण सब धारा आप अपनी बूझ उचारा तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम द्रंकार निर्विकार निरलंब याद अनिल अनाद असंभता का मूढ़ अचारत भेदा जाको भेद न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कैर सदा सब निरंकार का चीनत नह पैभ आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह वेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कहे पूपा अंडज जेर जसे तिजकीनी उत्पज खान बहर रज देनी कहूं फूल राजा होय बैठा कहूं समण भयो शंकर अकैठा सिगरे सरड दुखाए अचम भाव यादगार स्वरूप स्यम भाव अवर अच्छा मेरी तुम करो सिख वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठ पात उत पाता सकल मलेश करो रणघाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख हो मरे पौरख जमन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब डारे जो कल कोय कुबार ते है ताके काल निकटना ऐ है रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरें तुरकाला कृपा दृढ़ धन जाहे न हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुट छा श्वसके न को ये कुबार जन तुम्हें संभारा काल फांस ते ताहे वारा जिन नर नाम तुहारो कहा दार्द दुष्ट दुख ते रहा खड़के तुम्हें सर तिहारी आपा दल हो बारी सर्व ठोर मोह हो सहाई दुष्ट दुख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किलबिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता श्रिया तुजा भई दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तुतकाला मन बांछत पल पावा सोई दुख न दिसै व्यापत कोई अडैला सुना गुंग जो जाहे सुरस न पावई सुना मूढ़ चितलाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तिन नरके रहा हो जो जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई संबर सत्रह सहस पड़िजय अर्ध सहस फुन तीन कहिजय भाद्रव सूर्य अष्टमी रव बारा तीर सतद्रव ग्रंथ।

हजे भी हाई नहीं आख्या, फिर दूसरी अख च सूआ मारिया, यह अख पूरी नहीं निकली, ए जेला जड़ा लमक रहा है। जदो थक गए हार गए गुरु प्यारे आ संगीन मथे च मारी, मथे च यह संगीन का सूआ फसा के आ अद्धी खोपरी तह चक दिती। जिन्हों ने उन्होंने दर्शन किए ने गुरु प्यारे, जिन्हों ने उन्होंने उस वेले इस हालत में वेख्या, ऑनलाइन रिकॉर्डेड है भाई बलवंत सिंह जी नागो के, उन्होंने अंतम समय उन्होंने दर्शन किए सी, ते वड्डी गल के उन्होंने रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी गई। एक मरका हिल जाए उसकी दर्द नहीं बर्दाश्त की जाती। गुरु प्यारे जो भाई बलवंत सिंह ने दर्शन किए उस वेले वह कंध के नाल लगे हुए सी, वह कहता मैं जो वेखिया ना मेरे को कुछ सिकंड भी जरा ना वो अखा खुलिया नहीं रखी गई, उस वेले मैं अखा से हाथ रख लिया, अखा बंद कर लिया, क्योंकि आ मथे तो चो चो के खून आ दाड़ा बिलकुल आक रहा होया सी। ते ओ गुरु दे प्यारे ने अखा का दृश्य तो बिलकुल वेख्या नहीं सी जाता, एक अख बिलकुल है नहीं ते दूजा अख का डेला लमकदा है। गुरु प्यारे ए बख्श ए शहीदी ए जड़ी लाड़ी मौत किसे विरले लई एदा सज के आउंदी है, ए आई सी सज के बाबा बंदा सिंह बहादुर लई, उस दियां भी लत्तां कट्टियां गईआं, बाहां कट्टियां गईआं, अखां कट्टियां गईआं। यही साडे जथेदार भाई गुरदेव सिंह कौके दे नाल उहनां दा भी हड हड तोड़िया गया। मेरे कहण तो मुराद है ए बख्श ए सुंदर मौत सोहणी सुनखरी मौत धर्मिया लोगों के हिस्से आउंदी है, नाम दे रसिया दे हिस्से आउंदी है। सो आओ उस गुरसिख प्यारे नूं समर्पित एक कमला ढाडी नजर आदि सजी करन लगा है। कली कली गल गौर नाल सरवण करो।

पंथ अगर समग्री तुम रे सुतरतारी तम ते हो सो आग्ञा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लई त्याय फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दया वे ताई सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई हुए सहाय। दसवां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धर के बल जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई देख वाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां की कमाई का ध्यान धर के बल जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीस दते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ी ता नारियां नाल चरवाए सिखी सिदक किसां स्वासां संग निभाई इतना दी कमाई दा ध्यान धर के बल जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बल जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेता वे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रख्या रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसा जी के बल बाले बल जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहेब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत का राखा आप वाहिगुरु ही अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। नमाणियां दी माण सतगुरु नताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ। अरदास बेनती है आप जी दियां महान बख्शिशां रमतां दा सदका पावन हजूरी विखे दीवान सजे अज दे विशेष दीवान पंथ दे महान शहीद भाई साहिब भाई जसवंत सिंह जी खालड़ा शहीद भाई दिलावर सिंह जी बब्बर शहीद भाई बलबीर सिंह जी टटाणा ते समूह शहीदां नूं याद करदिआं होइआं अज दे विशेष दीवान सजे सजे हुए दीवानां विच अमृतमई बाणी दे शब्द कीर्तन कथा विचारां होइआं बाणी पढ़दिआं विचारदिआं अनेकां भुल्लां हो गईआं होणगीआं अलपग जाण के खिमा करनी अगों वास्ते समत बख्शणा अमृतमई बाणी दा भाव दर आईआं संगतां दे हिरदिआं च विसावणा सरबत दीआं तिल फुल पीटावां दर प्रवान करनीआं दरों घरों अमृत वेले दा जागरना नाम दान सिखी सिदक भरोसा दान सरबत दी कारज रास करने शुभ मनोकामना संपूर्ण करनीआं पावन दरबार दी हाजरी भरदिआं गुरसिख परिवारां वल्लों अरदासां बेनतीआं ने आप दे दर घर दे सेवक भाई जोगिंदर सिंह जी वल्लों अपने दोहतरे मिलन सिंह दे जन्मदिन की खुशी अंदर आप जी का शुकराना करदिआं होइआं पचंगी की चढ़दी कला लई
ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦਰਗੁਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਦੀਰਘਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਰਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਰਾਗਿਆ ਬਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ।

0: 머리 손에 할 사투리 아까르 와히구르지까 칼사 와히구르지기 파티
1: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जीओ अमृत वाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो तू समरथ वड्डा

जां कोट तुहारी रहाउ, बिन सिमरन जो जीवन बलनाउ, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कुमावे, अंत चले गुहारी।

हर पाणा गुरु पाया मेरा हर प्रभु करे सबास जियो भगत सतगुरु पुरख सोई जिस हर प्रभाणा पावे आनंद अनहद वजे वजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निरदास जियो तुर लिखिया परवाणा फिरे नाही गुरु दाए हर प्रभु पास जियो सतगुरु पाणे अपने बै परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोप सी सो मैं मूल न पाया मित पै जय मित बिकसै जस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पहनावे सतगुरु प्रथक होंदे बैराज आप टिकाया सब सिख बंद पुत पाई रामदास पैरी पाया अंत सतगुरु बोलिया मैं पिछे कीर्तन करो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंडित सदियो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्र किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुरु बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुरु शब्द सच निशान जियो सतगुरु पुरख जे बोलिया गुरु सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया

सत्संगत इतनी हाजिरी प्रवान करनी आप समूह संगतां अज बहुत दुखदाई समय विच सरदार सिंधा सिंह जी के परिवार नाल हमदर्दी प्रगट करने वास्ते उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने वास्ते आए हो। समुचे भैणा भरावां दा धन्नवाद है जो परिवार नाल इस दुख की घड़ी में शरीक होए हो। आपां सारिआं ने मिल के अरदास करनी है। संबत साह लिखिया मिलकर पावो तेल, देह सज्जन आसीछड़िया जो होवे साहिब स्यों मेल। बाबा आवो भाई हो गल मिले, मिल मिल देह आसीसा है। सतगुरु सरदार सिंधा सिंह कोलों संसार विच विचरदियां बेअंत भुल्लां होईयां होणगियां, भुल्लां नूं ना चितारदियां होईयां अपने चरणों में जीवकाली निवास बख्शन। पिछे परिवार को सकिया संबंधियों भैणा भरावों भाणा मन का बल बख्शन, यही अरदास है। सो कीर्तन का समा समाप्त है, आओ सारे मिलकर आप आनंद सभी के पाठ करिए, उपरंत दीवान की समाप्ति होगी। राम कली

सारे बोलो जी उच्ची बोल के मन सुनाउणा सोचा ना आउण मन च सोचा मैल ने सिमरन नाल धुप जाणगी पर जे उच्ची बोल के सुनूगा मन गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

लोभ को चारे नदियां अग पवे दजे नानका तरिए चरनी लग। चरण क्या है? नाम ने जे सिमर नहीं ना करते अपन तो फिर जिहड़ा साडा मन है ना सड़दा बलदा रहिंदा। अज सतगुरां ने पावन हुक्मनामा साहब यही बख्शिया कहते बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना बलना हुंदा मचना मचदा रहिंदा क्रोध की अग च। जिहड़े सिमर नहीं करते उन्हां बारे तुहाडी नहीं गल, तुसीं ते बहुत चढ़दी कला वाले। जिहड़े सिमर नहीं करते उन्हां लई अज सतगुरां ने स्पैशल हुक्मनामा साहब बख्शिया कहते एक बड़ा लम्मा लम्मी उम्र वाला सप हुंदा अरजारी अरजा आरजा मतलब लम्मी उम्र वाला कि वह बहुत मोटा हो जाता। वह बड़िया बड़िया खड्डा च पहाड़ियां दी खड्डा च रहिंदा उम्र बड़ी लम्मी हुंदी है। उहदे अंदर जहर बलदा रहिंदा मचदा रहिंदा। जिहड़ा जानवर कोई छोटा मोटा उहदे लागों लंघदा उहनूं फड़ के खा जांदा सड़दा बलदा रहिंदा। कहिंदे जे सिमर ना कीता ते साडा जीवन भी ऐसा ही है बिन सिमरन ज्यों जीवन बलना। उदाहरण कहिंदी दित्ती सप दी कहिंदे सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चले गुहारी। फिर होर उदाहरण देती वो सप की उम्र बड़ी लंबी होंगी छेती मरदा नहीं गा वो कई कई सैकड़े साल जींदा। कहिंदे इस तरह जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाओं रखाए कह जस कीरत जगले। पर कहिंदे जे तिस नजर ना आवई तां वात ना पुछ। फिर उहनूं की सजा की मिलदी? कीड़िया च कीड़ा बना के छड़ देंदे कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष। उन दोष लाया जांदा कि तैनूं इन्ना सोहना मानस जन्म दिता सी इन्ने सोहने सतगुरु दिते सी जिहड़ा ज्ञान दे रहे ने तू फिर नहीं गल मनी। हुण हुक्मनामा साहब दा आपां सारे पढ़ के आउने फिर कहिंदे जी सानूं पता ही नहीं गा है ना। संगत च जदों आउणा वा की करना कहिंदे अवर काज तेरे तै ना काम मिल साध संगत भज। सतगुरु की बाणी च लिखिया वो किड्डी वड्डी उदाहरण दिती है कहिंदे भावें नवां खंडा दे विच तेरा राज हो जावे तू हार के जाएगा अंत समय जे सिमर ना कीता। जे सिमर ना कीता तेरा जीवन भावें जिन्ना मर्जी लम्मा उम्र हो जावे सप तों भी ज्यादा पर तू ये शरीर रूपी जिहड़ा तैनूं जीवन मिलिया इस जीवन की बाजी नूं हार के जाएगा। हुण अगे तुहाडी गल सतगुरु कर रहे थे कहते गुण निधान गुण ते नहीं गाए। वह गुण निधान वाहिगुरु जी नूं कहा वा कहते उहदे गुण उही गाउंदे ने जिन्हां ते बख्शिश हुंदी है उहदी जां को किरपा धारी तुहाडे ते किरपा आओ आपां जपीए सारे है ना उच्ची बोल के वाहे।